0: ये तो हुए सुर, अब इन पे बिठाएं बोल। हाँ, तेरे नैना
1: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ।